नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितम्बर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर

0: मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with the participants of Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages with the programme focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilisation at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants travelling across multiple states, districts and villages. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jayashankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlighting the urgency of reform. He stressed that continuing to delay reform perpetuates historical injustice. He said that the members of the L69 and C10 join forces to keep pushing for UNSC reform. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched Bharat Taxi and the Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana aimed at supporting taxi drivers and farmers. Under Bharat Taxi, two-wheeler, taxi and three-wheeler drivers can register without paying any commission. They will also get social security cover of 5 lakh rupees. Under the Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, the interest rate

0: ఇంతటితో ఈ రోజుటి అంబటాల సంగతుల కార్యక్రమం సమాప్తం. రేపు పొద్దుగల ప్రసారమయ్యే అంబటాల సంగతుల కార్యక్రమంలో తిండితో మనం శీర్షికన రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేటువంటి పోషకాలను గురించి పోషకార శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఏ పోషాద్రి ప్రసంగం ఉంటుంది. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధుడు రావినారాయణ రెడ్డి, తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్తు సభ్యుడు సామల రాజవర్ధన్ ప్రసంగం వింటారు. కైతా శీర్షికన కొండా సాయిప్రియ స్వీయ కవితలు రెండవ భాగం ప్రసారమవుతాయి. ట్యూన్ చేసుకుని వినడం మరవకుండ్రి. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 ఎఫ్ఎం మనసు నిండా సమయం 8 గంటలు కావస్తున్నది. మరికొన్ని క్షణాలలో సమాచార ప్రభాత్ను, తర్వాత 8:30 మార్నింగ్ న్యూస్ వరుసగా ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి విందాం. ట్యూన్ చేసి వింటనే ఉండండి 100.2 ఎఫ్ఎం. తిరిగి మనం 8:30 ప్రసారమయ్యే నవలతో కార్యక్రమంలో కలుద్దాం.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी. भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे. जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता. रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए. और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में इंग्लैंड को मात दी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है. सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है. सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं. इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं. यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है. वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं. यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी. समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी.
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है. इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है. इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया.
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है. प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है.

0: और जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
4: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5,00,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक

0: असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में बी सविताश्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताश्री इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And India beat England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. A report.
6: The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants traveling across multiple states, districts and villages. During the journey, the Seva Yatris have engaged with local communities and participated in service-oriented activities. These include cleanliness drives and interactions with beneficiaries and residents, as well as activities at schools, hospitals, nursing homes and other community locations. The journey is scheduled to continue until October 7. Harshita Ojha, Akashwani News, Delhi.
5: The Delhi Cabinet has approved the Durga e-auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. More details in this report.
7: This scheme was approved in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Of these, 1,170 autos will be reserved for women and 130 for transgender beneficiaries. The Chief Minister said the scheme will give women and transgender persons an opportunity to become owners and drivers of electric autos. She said that a maximum of 90 electric autos for women and up to 10 electric autos for transgender beneficiaries will be allocated in each revenue district. Ms. Gupta said the scheme is an initiative towards making Delhi a safer, greener and more inclusive city. With Akshit Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched Bharat Taxi and Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, taking 2

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 12 గంటలు కావస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో వార్తలు వింటారు.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए. श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का.

0: कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी। इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 3 గంటలు దాటింది. ఇప్పుడు వివిధ భారతి ముంబై కేంద్ర కార్యక్రమాలు రిలే వింటారు.
1: సఖీ సహేలి सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को, सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार. और आज हमारे साथ है आरती. तो आरती, तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार. और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं.
2: बिल्कुल. और मंजरी जी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार. और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
1: क्या बात है, और बताओ कैसे.
2: बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं. और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के.
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहा है. तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता.
2: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना, जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना.
1: बिल्कुल दुखता है,
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे.
1: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें. तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं. तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं. हाँ. कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है,
2: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं.
1: हाँ. खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है, तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती है. तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं, अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं, उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं. तो
2: बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से, सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए, ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं, या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं. ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं. और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में. सोचो, एक अंतरिक्ष है, एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई पार नहीं. और साथ ही इतनी रहस्यमय दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो. पता नहीं कब से, शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन

0: अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी, तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है। अभी भी हम ये सब चीजें चौंक जाते हैं,
1: इतनी अद्भुत है, मतलब अद्भुत दुनिया ही है।
0: बिल्कुल।
1: और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है। कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती है और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
0: कहते ना जो इंसान है वो जो सारे तत्व है पृथ्वी के उससे मिलकर बनाए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो।
1: बिल्कुल, है ना। तो इस पर बातें करेंगे और मुझे कुछ कहना है कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि दो महीने पहले एक हफ्ते पहले कि आज सुबह सुबह रूठे,
0: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती से रूठ गई।
1: तो इस तरह के कुछ अपनी यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने हम लोग करने वाले हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
0: और जब कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
1: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

0: ते जाते हैं और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना उसे जानना शुरू किया तब से या शायद उससे पहले भी हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका आती।
1: बिल्कुल, और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल, और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो सब चीजें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जैसा तुमने पहले भी कहा था आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
1: हाँ।
0: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु शैवाल वगैरह पाए जाते हैं जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है जेलीफिश वगैरह जो रहती है, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज
0: है। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी है। इन्होंने लिखा, बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहरा से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं, इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
1: बिल्कुल,
0: पहली
1: और
0: बात तो।
1: सबसे बड़ी चीज है जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना, वो जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके से।
0: बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंके, समुद्र तटों को गंदा ना करें और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
1: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमयी समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
0: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद ले लिया जाए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: तो आरती देखो हमारे साथी क्या लिखते हैं बताओ।
2: हाँ, तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार हैं। जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है, बल्कि ये रहस्यमय जीवंत और अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है, तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं। और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है। लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियां, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियां इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहां पर सूरज

0: की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां का तापमान शून्य के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहां ऐसे बायोल्यूमिनेंट्स जो जीव होते हैं वो रहते हैं जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं, मतलब जहां पर पानी के सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती वहां पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है इसका 60 से 80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतनी विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
0: बिल्कुल। और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहां पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा है। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दशा पड़ बेचा।
1: जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत

0: प्रेमियों तक पहुंचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बार्ले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौने की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बार्ले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
1: बिल्कुल। और उषा बार्ले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बार्ले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बार्ले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बार्ले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं। और धीरे धीरे उषा बार्ले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: उषा बार्ले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल। उषा बार्ले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
0: कितने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल।
0: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
1: बिल्कुल। आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
0: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
5: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई हैं,
4: ऐसे मन
5: अनुभव लिखे हुए हैं।
4: तो हमारे साथी देखो, एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे, मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
5: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझमें एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूं, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये
4: है?
5: चाय पीने के लिए गाने का
4: मना लेते हैं। कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरीखी पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
5: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
4: सब बजते हैं। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है।

0: हंसी ठिठोलिया करते रहना चाहिए भाई। बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारी वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब, किससे और कितना रूठना चाहिए। हमें गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहां रूठना प्यार को बढ़ाता है और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्त दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसे रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
1: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए,
0: है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठे, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हो सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दी है।
0: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: बिल्कुल सुनवा देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ की रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
3: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहां प्रेम है वहां अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहां अपनापन है वहां छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
2: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्तों और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहां कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाए बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी जो लिखी भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारे साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखे, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटे, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखे और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं। हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती है और बहन को डांटने लगती है। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त पर हो गया है,
1: दूर
0: तो,
1: पास हाँ, सारे श्रोता रहते ही हैं,
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठ।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?

0: जी सैलून की दुकान है सर।
1: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
0: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आए।
1: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
0: 2-3 बार खुले सर।
1: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
0: जी जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
1: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
0: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
1: अच्छा, काम में बिजी रहे।
0: जी जी।
1: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
1: गाने की बोल
0: आप है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा, मैं जैके पार फिल्म का आप गाने के बोल रहे थे, कौन दिशा में लेके चला रहे बटुआ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर। आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, सीहोर की क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, परके 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर। बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती है वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713 और जो सरबती गेहूँ रहते हैं ना सर, उसमें पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूँ और हमारे क्षेत्र का गेहूँ सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूँ होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूँ होता है और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं
1: सर। जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है और गाने के बोल हैं, मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस सुनना है सर जी?
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी।
0: जी,
1: आज पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी,
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी भीड़ वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ,
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी जी जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी यादों के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम। और दोपहर में एक बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल दुआएं, बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी जी।
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी।
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है, घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनका क्या कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गाँव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है।
0: अच्छा,
1: बहुत
0: और वादिय कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दौद पथरी है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ में नजदीक है इस गांव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: ना, अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए,
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादिया कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये ककवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: जी ककवासा अपने जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली की रोड गए, जहाँ पर है जी, पास में पड़ता है अपना गाँव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके गाँव की क्या हालत है?
1: गाँव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद अभी तो, क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गांव के हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है।
0: हाँ, तो तैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा
1: सर जी, पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू हल्का याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम जो, बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाय गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी?
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया।
1: जी सर जी, विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान ली सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका?
0: अच्छा,
1: नाम ले।
0: ऐसा सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा, लेकिन लगा भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजय पथ, उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह, ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है?
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे, ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजय पथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं। मन चाहे प्रोग्राम में इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियाँ देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मन चाहे गीत, और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 MHz पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुंच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है, और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की टू मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर हैं हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला विंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो,

0: सत्ता का ही रहेगा, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल

0: दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देशभर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशू के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా ఇయాల్టి రేపటి కార్యక్రమాలు ముందుగా ఇయర రాత్రి 11:00 ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాలలో పల్లె పదాలు కార్యక్రమంలో ఈ పొద్దుమట్టు 6:20 తాంసి మండలం వడ్డాడి గ్రామానికి చెందిన కాడె పోదన్న బృందం పాడిన గంగదాస్ తత్వాలు మొదటి భాగం, ఇంకా మావల మండలం బట్టి సవర్గమ గ్రామానికి చెందిన దర్శనాల గంగమ్మ బృందం పాడిన గురుబోధ పాటలు వినొచ్చు. కిసాన్ వాణి కేంద్ర వ్యవసాయ మరియు రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమంలో ఇయర రాత్రి 7:00 గొర్రెల్లో బురద పుండ్ల వ్యాధి లక్షణాలు నివారణ ఆదిలాబాద్ పశుసంవర్ధక శాఖ సహాయ పశువైద్యులు డాక్టర్ కె సతీష్తో కె లెనిన్ పెట్టిన ముచ్చట, ఇంకా రైతు అంతరంగంలో సోయా కంది పంటల సాగు అనుభవాల గురించి సాత్నాల మండలం సైదుపూర్ గ్రామానికి చెందిన మన్నె సురేందర్తో యు దినేష్ పెట్టిన ముచ్చట ప్రసారమవుతుంది. ఈ కార్యక్రమ సమర్పణ పి కమలాకర్ రెడ్డి. బాసరుచులు కార్యక్రమంలో ఇళ్ళ రాత్రి 9:30

0: రేపు రాత్రి 8 గంటలకుండే ఉషారు కార్యక్రమంలో మరిన్ని జోరైన సినిమా పాటలు వినిపిస్తారు మా రేడియోని ఇస్తాం. ఇవాళ రాత్రి 10:30కి మధురిమలో హాయ్ అయిన పాటలుంటాయి. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా. సమయం 8:45 కావస్తున్నది. మరి కాసేపట్లో సమాచార సంధ్య, 9:00 న్యూస్ 8:09, 9:30 స్పాట్ లైట్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है. सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला. सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया. ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी. सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद. जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते. सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता. डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है. उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है. श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही. श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं. श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है. और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली.
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे. कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है. सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है. आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की.
3: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी. इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है. मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना

0: तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
2: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं, उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
0: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
3: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
6: The character of war,
7: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है।

0: और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
1: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
2: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
4: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है, उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं, उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
1: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
6: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
5: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognised for their last mile delivery.
8: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हैं तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
7: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
8: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
7: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
8: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
7: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
9: Mission Karma Yogi was launched in September 2020, envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karma Yogi has over 1.70 crore registered users and it hosts over 6,500 courses across domain, functional and behavioral competencies. It also includes more than 200 courses on AI and emerging technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. Addressing an event, Prime Minister Narendra Modi said that the objective of Mission Karma Yogi is to make the government officials citizen-centric.
10: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है
9: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज़ चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान सेड दैट मिशन कर्मयोगी वाज एस्टैब्लिश्ड विद द विजन ऑफ अचीविंग द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ विकसित भारत 2047 इन अ टाइमली एंड हाई क्वालिटी मैनर
11: विकसित भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल हमारे लक्ष्य हैं
12: द एंबिशियस गोल ऑफ विकसित भारत इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम एंड विद क्वालिटी मोस्ट इंपोर्टेंटली Our public servants must ensure the delivery of quality services to citizens. This applies not only to the government of India, but also to every state and every level of administration. From grassroots workers to senior secretaries and policymakers, capacity building is needed across the entire administrative hierarchy. With this vision, Mission Karma Yogi was established 5 years ago.
9: All central government employees and officers of the All India Services are required to complete prescribed courses on iGOT and which get captured in their annual performance appraisal reports. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
7: This is Akashwani giving you the news.
13: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
7: Welcome back to Evening News on Akashwani. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jayashankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. Secretary West C.B. George participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Mr. George emphasized India's human-centric and inclusive path of development anchored in the principles of Sarvodaya. Citing India's development partnership initiatives, Secretary West emphasized India's position

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
2: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वह उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशेबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी

0: राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।
2: कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी, तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
3: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
4: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
3: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Sattam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Sattam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Alina Anto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
5: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Rushabana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabana Devi has become a 3-time Asian Games medalist, adding to a 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
3: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yong-Buk found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
4: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकोवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 2016 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गई। कजाकिस्तान की मलिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नब्बखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक

0: के बाद सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वाकूवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
1: They were successful in India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
2: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favor of India's Veer Chautrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthilkumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthilkumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
3: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manu Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
3: Mahila Vyaktigat Saber Fencing Sparda mein Bharat ki CA Bhavani Devi aur Shreya Gupta ne round of 16 tak ka safar tay kiya. Dono khiladiyon ne pool stage se knockout stage mein jagah banayi, lekin round of 16 mein mili haar ke saath is sparda mein Bharat ka abhiyan samapt ho gaya. Bharat ki pehli Olympic fencer CA Bhavani Devi ne pool 4 mein 5 mukable khele. दो जीत के साथ वह पूल चार में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता है। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल दो में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते जबकि 2 में उन्हें